0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश

गंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सोचिए महीने के आखिर में जेब खाली हो और अचानक से कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, तब जो खुशी होती है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐसी ही खुशी का, हर्षोल्लास का एहसास हुआ। बुधवार और गुरुवार पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे प्रबल दावेदारों को हारता देख मानो मायूसी का अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर रोशनी की ऐसी खिड़की खुली जिसकी कल्पना बैडमिंटन के प्रकांड पंडितों ने भी नहीं की थी। जी हाँ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में भारत का एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ये पदक वुमेन्स डबल्स में हासिल किया है, एक ऐसी कैटेगरी जहां इससे पहले पदक 2011 में यानी 15 साल पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी ने भारत को दिलाया था। ट्रीसा ने कहा,
1: Finally this happened and obviously really happy that we converted this win into this semi-finals and getting a medal, but it's not stopping it. There is matches are coming tomorrow also. Obviously I want to thank the crowd people. I think the crowd was amazing today. That was really giving that positive vibes to us.
0: इस पदक की महक सूखे के बाद पड़ने वाली पहली बारिश जैसी इसलिए भी है क्योंकि ट्रीसा और गायत्री का ये साल मुश्किलों में कटा है। अप्रैल में ट्रेनिंग के दौरान ट्रीसा के टखने में लगी चोट के चलते ये जोड़ी ना ही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल पाई और ना ही प्रतिष्ठित ऊबर कप में हिस्सा ले पाई।
1: बिफोर एशियन चैंपियनशिप आई गॉट इंजर्ड 3 डेज बिफोर, दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट्स बीन सैड एंड इमोशनल एंड काइंड ऑफ मिसिंग दोस मेजर टूर्नामेंट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया. And all those moments I missed. I think those times, there is so much of ups and downs that these many years that we all went through. Now it's, we are in a great shape and we just want to continue that.
0: यहाँ भी क्वार्टर फाइनल में चुनौती कड़ी थी। सामने चीन की मजबूत जोड़ी थी जिसका एक हिस्सा थी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी चांग शू शियान और दूसरी थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली जिया यी फान। और शुरुआत भी ऐसी हुई, जब तक ट्रीसा और गायत्री अपने रंग में आती तब तक स्कोर 9-2 का हो चुका था, लेकिन फिर भारतीय जोड़ी ने 6 पॉइंट लगातार लिए। इसके बावजूद वो पहला सेट 21-16 से हारी। गायत्री बताती हैं,
2: फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने, स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया। वी डोंट वांट टू रिवील टू मच ऑफ द स्ट्रेटजी बट वी वर जस्ट रोटेटिंग, वी जस्ट वांटेड आवर लेग्स टू मूव।
0: पर कोर्ट साइड पर बैठे मेंटोर और गायत्री के पिता पुलेला गोपीचंद और कोच बी सुमित रेड्डी ने सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया, स्टे काम।
1: He always said like just calm down and just be in the present moment. I think that really worked today. That's the kind of advice he gave behind us.
0: दूसरे सेट में कांटे की टक्कर हुई, स्कोर 15-14 तक पहुंचा और उसके बाद गायत्री और ट्रीसा ने मानो टॉप गियर डाला, 6 पॉइंट लगातार जीतते हुए 21-15 से वो सेट अपने नाम कर लिया।
1: The crowd was so amazing. The crowd that gave us that confidence even we lost the first game also. They were in full josh that come on girls, you can do this and I think that really helped us.
0: तीसरे सेट में चीनी जोड़ी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की, भारतीय जोड़ी 1-4 से पीछे थी और फिर 8 पॉइंट लगातार ट्रीसा और गायत्री ने लिए और अंततः इस मुकाबले को 21-13 से जीता। इस जीत पर कोच सुमित रेड्डी ने कहा,
3: मैच आज का तो बहुत अच्छा गया है, जैसा लड़कियां ने खेला हम तो बहुत ही खुश हैं एंड उसके साथ मेडल आ गया, आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोनों बहुत ही बेहतर खेले, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग खेले, इतने हजारे लोगों के बीच में खेलना मजाक की बात नहीं है, तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस खेले।
0: इस जीत के बाद सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो गया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल आना सुनिश्चित है, लेकिन उससे मन कहां भरने वाला है, तो सबके मन में एक ही सवाल है,
4: गोल्ड आएगा
3: वो कल देखेंगे, कल का हम अभी ओपोनेंट्स का भी मैच देखना है, देख के हम ऑब्वियसली बोलेंगे हमारा प्लेयर्स को कि मोस्टली ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं। एंड आई थिंक गोपी सर ऑलरेडी मैच से पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो गोपी सर के साथ एक बार डिस्कस करने के बाद आई थिंक उसके हिसाब से सर प्लान करके बोलेंगे।
0: सेमीफाइनल में सामने होने वाली है पहली वरीयता प्राप्त चीन से ही आने वाली ल्यू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी, जिससे पहले भी ट्रीसा और गायत्री 6 बार हार चुके हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतना अब इस जोड़ी की फितरत है और इसीलिए शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल का हमें बेसब्री से इंतजार है।

0: पगोड़ी के आड़े आए हैं, लेकिन गड़गड़ाती तालियों के बीच और भारतीय फैंस की हौसला अफजाई के समक्ष रंकी रेड्डी और शेट्टी ने एक अच्छी शुरुआत की। पहले गेम में 18-16 से लीड भी बना ली थी, लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा कि धीरे धीरे दर्शक दीर्घा से आने वाली आवाज कम होती गई और अंत में एक हताशा भरी चुप्पी में तब्दील हो गई। 18-16 से पिछड़ने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने 5 पॉइंट लगातार लेकर पहला गेम जीता और दूसरे गेम को तो एक तरफा ही बना डाला। 21-9 से जीत हासिल की और महज 36 मिनट में इस मुकाबले को 2 सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया।
1: They were quite good in the first four shots. Whoever controlled the first four shots in the first set, we are controlling it. They got confident after 1 or 2 points. So if it is rally game, it's anybody's game. It's 50-50 because both have the attack. The Chinese can attack as well. We can attack as well. But the difference was only the service and service return. They got that spin, so he got little bit confident in that towards the end. He started spinning differently rather than the first one. After second game, I think they got pretty much confident. They are everywhere, wherever we are hitting, they're just playing their game. So I think, yeah, kudos to them, but we could have put little bit more tighter from our side, but I think we'll go back and learn what we did miss.
0: हार के बाद मायूस चिराग शेट्टी ने कहा,
2: पहला गेम काफी अच्छा था, 18 तक हम लीड भी कर रहे थे, जो गेम प्लान हमने सेट किया था वो काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था. After we lost the first game, they came back a lot more harder in the second game. We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game. A lot of the points हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश हुई और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज.
0: शनिवार के दिन इंदिरा गांधी इंडो स्टेडियम के कोर्ट 1 में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां भारतीय प्रशंसकों की नजरें गायत्री और ट्रीसा के मैच पर होंगी, तो वहीं वुमेन्स डबल्स के दूसरे सेमीफाइनल में चीन की ली और लुओ के सामने होंगी दक्षिण कोरिया से आने वाली पूर्व नंबर 1 बेक और ली की जोड़ी। महिलाओं के एकल वर्ग में 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला होगा, चीन की बांग जीयी के सामने होंगी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग, जिनका पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट में दबदबा कायम रहा है। युंग कहती है कि उनका फोकस प्रतिद्वंदी पर नहीं उनके खुद पर होता है।
3: My goal is to achieve a great result any tournament. Yeah, I just focus on myself and one point at a time.
0: दूसरे सेमीफाइनल में दिखेंगी थाईलैंड से आने वाली पोर्नपावी चोचुवांग, जिनको क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला, उनके सामने जापान की अकाने यामागुची होगी। पुरुषों के सिंगल्स में चाइनीज ताइपे के चाउटिन चांग जापान के कोडाई नारोका को चुनौती देंगे, तो दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई के सामने होंगे फ्रांस के एलेक्स लानियर, जो कांस्य पदक जीतने से ही बहुत खुश हैं, लेकिन पदक का रंग बदलने के लिए भी उतने ही उत्सुक।
4: I'm proud of myself. I need now to focus on this for tomorrow. I want to change the color of the medal definitely. And I'm also excited about tomorrow.
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट लिए आकाशवाणी के लिए मैं दर्पण तिकिया।

0: हाय नमस्कार, मी अंकुश चौधरी. आपण ऐकत आहोत 107.1 MHz वर FM रेनबो. दिवसाची संगीतमय सुरुवात करणारी आकाशवाणी मुंबईची FM रेनबो वाहिनी. ऐकत राहा आणि आनंद घेत राहा.
1: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, त्यानंतर 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 पुणे केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या मराठी बातम्या.
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है. कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं. गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की. भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी. विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से. और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के

0: साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे। क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट

0: सीमित नहीं, अपितु हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के

0: पर्यावरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज रिफॉर्म्स आर नॉट कंपल्शन बट अ कमिटमेंट एंड कन्विक्शन फॉर गवर्नमेंट, असर्ट्स इट्स पॉलिसीज आर प्रो पीपल, प्रो ग्रोथ एंड प्रो डेवलपमेंट। Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur declaration focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 8:46 हो चुके हैं, मेरी और आपकी मुलाकात का वक्त आज अभी इसी वक्त के लिए मुकर्रर था, तो लीजिए मैं आ गई हूँ आपके साथ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। भाई आज है शनिवार, कोई भी अपना बिस्तर छोड़कर उठने के मूड में नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग हैं जिन्हें ऑफिस जाना हो सकता है, किसी का हाफ डे हो सकता है, किसी को कुछ काम हो सकता है, कुछ फाइल्स निपटानी हो, कुछ प्रेजेंटेशन बनानी हो या कुछ भी करना हो, तो उन सब के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जागो मोहन प्यारे, उठ जाओ, चलो भाई जाने का टाइम आ गया है ऑफिस में। और जाते जाते ट्यून इन कर लो 107.1 FM रेनबो को, क्योंकि यहाँ पर मैं ममता सहगल हूँ आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई और मस्त मस्त बातें। क्या करेंगे आज, किसके बारे में बात करेंगे ये हम जानेंगे, लेकिन फील तो आपको पता चल गई है, जीतना चाहते हैं हम, और जो लोग जीतना चाहते हैं उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता जीतने से।

तो भाई जज्बा है जीतने का, और कहते हैं कि अगर आपके पास जीतने का जज्बा है तो हौसले की कमी नहीं रहती, और अगर आपका जज्बा और हौसला दोनों मिल जाए तो फिर जीत दूर नहीं है। और ये भी कहते हैं कि निशाना सिर्फ आंखों से नहीं हौसले से भी लगाया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में जिसने अपने निशाने से सिर्फ अपने टारगेट को ही नहीं बल्कि देश की उम्मीदों को भी साधा था। कौन है ये, क्या है इनकी कहानी, और आज के दिन मैं क्यों लाई हूँ इनकी कहानी, ये भी आपको बताऊंगी। नहीं नहीं, इनका जन्मदिन बिल्कुल नहीं है, तो आप प्लीज इंटरनेट पे जाके रिसर्च करके किन किन का जन्मदिन है उनकी लिस्ट मत निकालिएगा, आपको नहीं मिलने वाला है तो ये मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगी कौन है ये, किसके हौसले की मिसाल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, किसकी हिम्मत की मिसाल मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा 107.1 FM रेनबो पर, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ।

0: अक्सर कई लोग अपने सपने और अपने एम के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी अपने उस एक सपने के नाम कर देते हैं जो उन्होंने बचपन से देखा है। आज मैं जिनकी कहानी लाई हूँ वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आने वाली हैं, इन द सेंस कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने 25 मीटर राइफल शूटिंग में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। नाम है राही सरनोबत। जी हाँ, ये नाम है जिसने भारत का नाम आज ही के दिन सारी दुनिया में रोशन कर दिया था, और इसलिए आज इन्हीं की कहानी मैं लाई हूँ आपके लिए। राही की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उनका सफ़र हमेशा से आसान नहीं था। बहुत कड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत कुछ सहा है, लेकिन रुकना उन्होंने नहीं चुना। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस राही की कहानी। हमारे साथ हर राह में हमारे साथ रहिएगा। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
1: जिथे पोहोचायला पक्के रस्ते नाहीत, जिथे मोबाईलचं नेटवर्कही काम करत नाही, अशा छत्तीसगढच्या घनदाट जंगलात नक्षलवादाच्या सावटाखाली कोणीतरी गेली 37 वर्ष प्रकाशाचे दूत बनून काम करत आहेत। शहरातील सुखासीन आयुष्य सोडून बस्तर आणि अबुझमाडच्या आदिवासी बांधवांचे अश्रू पुसणारे महाराष्ट्राचे एक सेवाव्रती दाम्पत्य पद्मश्री डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले आणि सुनीता गोडबोले।
2: घोर जंगलात राहणाऱ्या ज्या कुपोषित आदिवासी मुलांच्या सेवेमुळे पद्म पुरस्कारापर्यंत आम्ही पोहोचलो, तर त्या मुलांचं दुःख, त्या मुलांची व्यथा, त्या मुलांचं आरोग्य हा विषय हायलाइट सगळीकडे होईल पद्मश्री पुरस्कारामुळे।
3: कुठल्याही वनवासी भागाला मागासलेला किंवा समाजाला मागासलेला हा शब्दच मला अजिबात आवडत नाही। एकतर आमच्या डोक्यामध्ये हे पक्क आहे की आम्ही कुणाला सुधारायला गेलेलो नाही, तर त्यांच्या बरोबर राहून त्यांच्या सहवेदनेने त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याच्यावर आपण उत्तर काढण्यासाठी गेलेलो आहोत।
1: हा खडतर प्रवास, अथांग माणुसकी आणि न डगमगणारी जिद्द जाणून घेण्यासाठी नक्की ऐका ही प्रेरणादायी मुलाखत अरण्यातील सेवाव्रती। शनिवार दिनांक 22 ऑगस्ट आणि रविवार दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता न्यूज ऑन AIR ॲपसह FM गोल्ड 100.1 MHz।

तो सबसे पहले तो भाई उन सभी का शुक्रिया जो सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं, दत्तात्रेय आदत जी, रजनीकांत पाटिल जी, विश्वास चंदोरकर जी, प्रमोद खरकनिस जी, विजेंद्र घटोल जी, फिरोज सिरनपुरिया जी, ममता महेश भाटकर जी, किशोर नायक जी, चेतन कुमार जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, महेश बोहरा जी, अंजू जी अंधेरी से, दीपा पालकर जी, विक्रम आठवले जी, श्रीधर मुराजकर जी, पंकज मोहर जी, श्रेय राउत, मिलेश गजानंद राउत और इनकी पूरी टीम है, योगेश गजानंद पाटिल, कुणाल महेश राउत टिगरेपाड़ा, इन सब का हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणव शिंदे जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, आप सभी जो हमसे जुड़े हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रणव शिंदे जी जो हैं वो एज़ यूजुअल कविता के अंदाज में हमसे बात करते हैं, तो कहते हैं कि बैठे बैठे तो सिर्फ सोच बदल सकती है, तकदीर बदलने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, मंजिलों के मुसाफिर कभी रुका नहीं करते, तूफानों के आगे वो कभी झुका नहीं करते, किस्मत के भरोसे बैठने वाले सिर्फ तरसते हैं, जो लगाते हैं दौड़ वही कामयाबी का रस चखते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रणव जी, हमें इतनी खूबसूरत कविता लिखकर भेजने के लिए, और आपकी ये कविता कहीं ना कहीं उस शख्स की कहानी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है जिसकी मैं कहानी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और बहुत ही हिम्मती ये महिला रही हैं, राही सर नौबत, और इनकी कहानी जैसा मैंने कहा कि इसलिए भी खास है क्योंकि इनका सफ़र बहुत आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में इन्हें अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी की कमी की वजह से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी उस वक्त, ये पूरी तरीके से जो है ट्रेनिंग नहीं ले पाती थी, लेकिन एज आई सेड कि इन्होंने रुकना नहीं सीखा, बल्कि बेहतर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने अपने दम पर मुंबई का रुख किया। आगे की कहानी आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इनकी कहानी सुनकर कहीं आपको इनसे मोहब्बत ना हो जाए, और होनी भी चाहिए।

और जब ये मोहब्बत आपको अपने सपने से हो तो डेफिनेटली ये कमाल ही नहीं धमाल की चीज बन जाती है। राही ने लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया 2012 में। जी हाँ, बहुत खास बन गया था ये साल और इसी साल इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में ओलंपिक क्वालिफिकेशंस हासिल करके पहली भारतीय महिला शूटर बनने का खिताब हासिल किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे की कहानी क्या है जानेंगे हम बस कुछ ही देर में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर मस्त मुंबई की मस्त मस्त बातें।

थैंक यू सो मच इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हम पर बरसाने के लिए और हमें बताने के लिए कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत बहुत बहुत पसंद आ रहा है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारी कहानी को 107.1 FM रेनबो पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. मैं हूं ममता सहगल आपके साथ. साल 2015 में एक एक्सीडेंट के कारण राही सरनोबत की जो एल्बो थी, जो उनकी कोहनी थी, उसमें बहुत गंभीर चोट आई थी और उन्हें लगभग 2 साल तक रिकवरी से गुजरना पड़ा था. जरा सोचिए एक शूटर के लिए उसके हाथ और उसकी स्टेबिलिटी कितनी महत्वपूर्ण होती है. लेकिन राही ने उस मुश्किल दौर को भी अपनी मंजिल के रास्ते में दीवार नहीं बनने दिया. और फिर आया दिन 22 अगस्त यानी कि आज की तारीख, लेकिन साल 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में राही ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वो शूटिंग में इंडिविजुअल एशियन गेम्स गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई. तो दोस्तों राही सरनोबत की कहानी जो है वो हमें एक बहुत खूबसूरत सी बात सिखाती है. वो ये कि टारगेट जितना बड़ा हो फोकस उतना ही मजबूत होना चाहिए. कभी फैसिलिटीज कम होंगी, कभी रास्ते में आपके रुकावटें आएंगी, आपको फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, कभी हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका निशाना

साफ है और हौसला मजबूत है तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। भाई नामुमकिन खुद भी तो कहता है कि ना मैं मुमकिन हूं। अगर आप मुमकिन के आगे से ना हटा दे तो वो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें बताइएगा। ये एक सच्ची जिंदगी की कहानी है जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है, और अगर हम आपको थोड़ा सा प्रेरित कर पाए पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हमें लगेगा हमारी ये जो मेहनत है वो सफल हो गई। अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा, अपने विचार हमें ज़रूर भेजिएगा, अपने दिल की बात हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और याद रखिए, निशाना सिर्फ टारगेट पर नहीं लगाना है, निशाना लगाना है अपने सपनों पर। फिलहाल चाहूँगी आपसे इजाज़त। ठीक 10 बजे होंगे समाचार हिंदी में, समाचारों के उस पार नमस्ते भारत में मेरी और आपकी फिर से होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सुधारकों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। समाचारों में आगे है, मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित आर्य कॉलोनी में एक पशुशाला के पानी के टैंक में तैरते समय 2 स्कूली बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। दोनों को दमकल विभाग ने बाहर निकालकर ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। अम्सलेफेन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।

वेलकम बैक 104.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत में आज मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा सोचने वाला, विचार विमर्श करने वाला सवाल। सवाल ये है कि क्या हम सुनना भूल गए हैं? जी हाँ, क्या हम सुनना भूल गए हैं? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ बताऊंगी आपको। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत में एक और खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं। हमने शुरुआत की थी लता जी की आवाज़ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, लता जी की ही आवाज़ में एक और गीत सुनते हैं और उनके साथ हैं उदित नारायण जी।

जी हाँ, कब तक चुप बैठे। आजकल लोग यही सोचते हैं और सोचते हैं कि कब हमें मुंह खोलने का मौका मिले, क्योंकि कोई किसी की सुनना तो चाहता ही नहीं है। और रंजन जी हजारीबाग झारखंड से लिखते हैं कि लोग सुनना भूल गए हैं और सुनाने लग गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि लोगों ने आजकल सुनना छोड़ दिया और हर वक्त सिर्फ सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिस बात पे हम हंस रहे हैं वो बात गंभीर चिंता का विषय भी बन सकती है, क्योंकि आजकल जो है ना, हम लोग अगर सुनते हैं तो वो इसलिए नहीं कि हम सुनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम सुनाना भी चाहते हैं। क्या कहूँ, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लोगों के दिलों में कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है वो शेयर करना चाहता है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं वो बोलना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बोलने वाले सब हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। जब सामने वाला कभी कुछ कह रहा होता है ना, तो हम क्या सच में उनकी बात सुनते हैं? कई बार तो सामने वाला अपनी बात शुरू ही करता है और अचानक से कोई और या हम ही कभी कभी बोल पड़ते हैं, अरे अच्छा मुझे पता है यार तुम क्या कहने वाले, तुम यही कह रहे थे ना। अरे बंदे को बोलने तो दो भाई, अंदर की भड़ास तो निकालने दो, क्योंकि जब कोई इंसान बोलता है ना तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। थोड़ा तो सुनने का मैदा रखिए यार। इसी के बारे में बातचीत करेंगे आज नमस्ते मुंबई में मेरे यानी कि ममता सहगल के साथ। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी से अपने दिल की कुछ बात कहना चाहते थे और उन्होंने जो है आपकी बात सुने बिना ही आपको कुछ कह दिया, या फिर सुनाने गए थे और सुनकर आ गए उनके दिल की बात और उनको ढांढस बढ़ाकर आ गए, तो आप भी मेरे साथ अपने ऐसे किस्से शेयर कर सकते हैं। अगर वक्त ने मुझे इजाजत दी तो शायद मैं आपके किस्से अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकूं। फिलहाल तो एक बेहद खूबसूरत सा गीत मैं लाई हूं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ।

भाई आप देखिए, दिल खोल के देखिए, लेकिन मुंह खोलने से पहले दिल खोल के सोचिए भी। वेलकम बैक, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, शनिवार की सुबह है अब तो। आई एम श्योर आप सब अपने अपने डेली काम सब खत्म कर चुके होंगे, चाय पानी पी चुके होंगे, नाश्ता कर चुके होंगे, कुछ हैं जो अभी भी सो रहे होंगे, खासकर कि बच्चे। लेकिन अब है वक्त जागने का। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, मैं हूं ममता सहगल आपके साथ साथ। दोस्तों, जो कान होते हैं ना, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं, वो सुनने के लिए होते हैं ताकि हम सुनें और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग और दिल तक भेजें ताकि हम समझ भी सके। कई बार हम लोगों से बात करते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो होता है ना, आजकल ये बड़ी ही बुरी चीज़ निकली हुई है जो कहीं ना कहीं किसी अच्छाई के लिए निकली थी, लेकिन आजकल लोग इसी से परेशान हो गए हैं। और वो है हमारे हाथ में पकड़ा हुआ एक ऐसा यंत्र

जिसने हम सबको छोटा सा है लेकिन अपने साथ ऐसा बांध लिया है कि हम उसके मुहजाल से निकल ही नहीं पाते। हाँ, थोड़ा अतिशयोक्ति हो गई है, मतलब कि थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया है, लेकिन सच यही है। मैं बात कर रही हूँ मोबाइल फोन्स की। तो अक्सर हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान रहता है हमारे मोबाइल फोन पर। अरे कोई मैसेज तो नहीं आ गया, अरे कौन सी रील ट्रेंडिंग है, अरे कितना कॉमेडी वीडियो था, अरे ये, अरे वो, अरे भाई सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है। आपको प्रभु ने दो दो कान दिए हैं, आप जरा कान खोलकर सुनिए तो सही। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि आप एक कान से अपने मोबाइल पे जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और जो आपसे बंदा अपने दिल की बात कर रहा है उसकी बात भी सुन सकते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी कोई शक्ति किसी भी इंसान को अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि आप एक टाइम पर दो तरह की सुनी हुई बातें प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आपका दिमाग एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है और वो वहाँ फोकस करता है जहाँ आप फोकस करना चाहते हैं। तो अक्सर जब कोई आपसे बात करे तो थोड़ी देर के लिए सही, पर ये जो छोटा सा मिनी यंत्र है आपके हाथों में जिसने आपको अपना गुलाम बनाया हुआ है, इसे ज़रा साइड में रख दीजिए, फिर सुनिए उनकी बात। हो सकता है कि किसी बच्चे को अपने दिल की बात कहनी हो, कुछ आपके साथ शेयर करना हो जो शायद वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता। आपकी वाइफ को आपसे कुछ शिकायत करनी हो, कभी उनकी शिकायत सुन लीजिए। आपके हस्बैंड को आपसे अपने दिल की बात करनी हो जो वो बहुत दिल से करना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें मौका ही नहीं देती हैं। शायद आपके दोस्त को आपसे कोई राज की बात शेयर करनी हो जो वो अपने माता पिता से भी नहीं कर सकते। शायद आपकी टीचर आज एग्जाम के बारे में कुछ खास बताने वाली है। भैया सोच लीजिए, टॉप करना है तो टीचर की हर बात सुनना बहुत जरूरी है। थोड़ा नजरिया बदलिए, थोड़ी नजर बदलिए, और सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, सुनकर समझने के लिए सुनिए, क्योंकि आप कई बार सुनते हुए कुछ ऐसी चीजें भी अपने, कई बार कहते हैं ना, सीखने के लिए सुनना जरूरी होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए सुनना शुरू कीजिए।

तो हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि आपने मोबाइल फोन की बात करी है और मोबाइल जो है वो अंग्रेजी का शब्द होता है, तो हमें बताइए कि हिंदी में मोबाइल को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में मोबाइल फोन को सचल दूरभाष यंत्र कहते हैं, और जो नॉर्मल फोन होता है ना उसे दूरभाष कहते हैं, दूरभाष यंत्र कहते हैं। सचल दूरभाष यंत्र का मतलब ये है, सचल जो आपके साथ साथ कहीं पर भी चल सके। तो अब जो है आपके सवाल का जवाब मिल गया है, थोड़ी हिंदी की क्लास भी हो गई है, तो अच्छा लगा है। और मुझे ये भी जानकर अच्छा लगा है कि आपने मेरी बात इस वक्त डेफिनेटली बहुत ध्यान से सुनी होगी। कभी आपने अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी कोई पुरानी कहानियां सुनी है? सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने उन कहानियों को दोबारा सुना है? जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कहानी आपने पहले हजारों बार सुनी हो, लेकिन उनके लिए आज भी वो कहानी उतनी ही खास है। कभी अपने दोस्त से ना सिर्फ एक सवाल करना, तुम सच में कैसे हो? और अगर उसने आपको जवाब दिया और सिर्फ इतना बोलकर मैं ठीक हूं वो चुप हो गया, तो आप थोड़ी देर खामोश रहिएगा, क्योंकि आपकी खामोशी उसे एनकरेज करेगी अपने दिल का असली हाल बताने के लिए। अब उसकी कहानी के बीच में अपनी कहानी मत शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो चुप हो जाएगा। क्योंकि कई बार अक्सर हमारे दिल की गहराइयों में कुछ बातें होती हैं जो हम चाहकर भी किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए जब कोई आपसे कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुनिए। आज आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, ठीक है? क्या काम है मैं आपको बताऊंगी, और फिर जब हमारी अगली मुलाकात जब भी होगी तब आप मुझे बताइएगा कि क्या आज आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने किया या नहीं किया।

तो चलिए वक्त है आपको होमवर्क देने का। तो अब आपको क्या करना है, आप कह सकते हैं कि आपको मेरे लिए करना है, या आप कह सकते हैं कि आपको ये अपने लिए करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको ये किसी अपने के लिए करना है, लेकिन करना जरूर है। तो आज जो है, आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसकी भी परवाह करते हैं, उसके पास जाइए, अपना मोबाइल, टीवी या जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे साइड में रख दीजिए। अपने बुज़ुर्ग माता पिता के पास जाइए, अपनी बहन से बात कीजिए, किसी से भी, भाई से बात कीजिए, दोस्त से बात कीजिए, बीवी से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए। जाइए उनसे कहिए कि चलो आज बात करते हैं, कुछ तुम्हारी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, लेकिन अपनी मत सुनाइए, उनकी सुनिए पहले, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ सुनिए। क्योंकि जब आप किसी की बात बहुत दिल से सुनते हैं, तो शायद आपको कोई नई बात पता चल जाती है, या फिर कभी कभी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, या फिर शायद सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि हाँ, कोई है जो मेरी बात भी सुन रहा है। तो जब अगली बार कोई आपसे कहे ना, अच्छा मेरी बात सुनोगे, तो आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन मत काटिएगा। अगर आप आमने सामने हैं तो ये मत कहिएगा अरे यार मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ना ना ना ना ना ना। क्योंकि अगर वक्त हाथ से रेत की तरह सरक गया, तो कभी कभी दिल में पछतावा रह जाता है कि वक्त रहते हमने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। तो आपको जब जो कहे ना यार एक बात सुन, तो सुन लीजिएगा, अपना थोड़ा सा वक्त और पूरा ध्यान उन्हें दीजिएगा उनकी बात सुनने के लिए। क्योंकि जब कोई आकर हमसे बात करता है, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने मन की भड़ास निकालनी होती है, वो इसलिए क्योंकि वो हम पर विश्वास करता है। तो उनके विश्वास की लाज रखना आपका काम है, हमारा काम है ना। तो ये होमवर्क जरूर करिएगा, जाइएगा अपने किसी खास के पास और उनसे आज सिर्फ बात करिएगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उनसे दिल से दिल की बात कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर FM रेनबो पर हम यही कहते हैं कि दिल से दिल तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, और वो आवाज़ तब पहुँचेगी जब आप खामोशी से उनकी बात सुनेंगे। और मुझे अगली बार ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरे होमवर्क पे काम किया कि नहीं। मैं आपके पेपर्स चेक करूँगी, बताऊँगी किसको मिले हैं कितने नंबर। फ़िलहाल मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है इसे गुनगुनाते रहिए। और हाँ, दूसरों की बात सुनिए, सुनाने से ज़्यादा सुनना कई बार ज़रूरी होता है। सीखने के लिए सुनना ज़रूरी होता है, किसी को जानने के लिए सुनना ज़रूरी होता है, किसी को मानने के लिए सुनना ज़रूरी होता है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सुनना ज़रूरी होता है, किसी को पीछे करने के लिए सुनना ज़रूरी होता है। तो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मेरी और अगली मुलाकात होगी बहुत जल्द, होगी बहुत खास। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक गीत है उसे गुनगुनाते रहिए, और हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर अपना रिश्ता ऐसे ही बनाकर रखिए।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र के 2 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। बीड जिले की डॉ. कविता नरसिंहराव गिट्टे और नासिक जिले की कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दिए जाने के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों में मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग द्वारा जारी चेतावना के अनुसार ठाणे, पुणे और रायगढ़ में भी इस दौरान मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, मैं अनीता आई हूँ और लेके आई हूँ ब्रेक फ्री आपके लिए। और वैसे आप कहे और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं है ना।

जी हाँ, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जब आप श्रोताओं का साथ नहीं होगा। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज ब्रेक फ्री के इस सफर पर। और मंजिल मिलेगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती। वैसे एक जो पंक्ति है जो आप बार बार सुनते हैं फोन पर, वो ये है, कृपया प्रतीक्षा करिए, आप कतार में हैं। जी हाँ, कई बार आपने सुना होगा ना इसे, जब खासकर आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो आपको यही बता दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और फिर कोई संगीत सुनवा दिया जाता है, फिल्म म्यूजिक, ताकि आप बने रहे। ये हम में से कईयों के साथ होता है। और मानो इसी बात पे मैं आ रही हूं कि कतार जो है हमारे जीवन का मानो एक हिस्सा ही बनकर रह गई है। और बातें होंगी कतार के बारे में, और आपके क्या अनुभव है इसके बारे में जरूर साझा करिएगा। लेकिन एक गीत हो जाए, क्योंकि हम भी हर हंसी चीज के तलबगार हैं।

जी हाँ, बात हो रही थी कतार की, क्योंकि चाहे आप बस में चढ़ना चाहें या फिर टैक्सी ही लेना चाहें या फिर लिफ्ट में चढ़ना चाहें, हर जगह कतार का तो सामना होता ही है। इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन जब कतार में खड़े होते हैं तो उसकी भी मानो एक अपनी रवायत होती है और एक अनुशासन उसके साथ जुड़ा होता है, जिसके बारे में हम बातें जरूर करेंगे। और हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोतागण जो है कतार में खड़े खड़े ही हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हों, और हो सकता है अपने अनुभव को वे साझा भी कर पाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो चलिए अगले गीत की ओर। और वैसे पंक्ति में खड़े खड़े आप ये गाना तो शायद नहीं गा सकते, लेकिन जो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं या फिर कहीं घूमने निकले हैं, शायद वो ये बात कहें।

जी, हमारे कई सारे श्रोता हमें लिखकर अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं आज के विषय के बारे में, और उनका भी यही कहना है कि हम कतारों से बच नहीं सकते, लेकिन अनुशासन जो है बनाए रखना जरूरी है और अपनी बारी का इंतजार करना भी उतना ही जरूरी है। और अगर आप याद करें पुराने दिनों को, तो जैसे रेलवे स्टेशन पर जाकर हमें टिकट निकालना पड़ता था या फिर बस का भी, तो लेकिन अभी जो है कतारों में खड़े होकर रेलवे की टिकट तो नहीं निकालनी होती, अधिकांश लोग जो है ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। तो एक तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसने मानो एक हाथ बढ़ाया है और हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर दिया है, लेकिन जो प्रत्यक्ष कतारों से हम अप्रत्यक्ष कतारों की ओर, यानी वो जो डिजिटल और वो जिस तरह से हम कस्टमर केयर वाले जो कतार हैं उससे बच नहीं सकते, आप ऊब कर फोन पटक ही देते हैं और फिर मानो कुछ समय बाद आपको लगता है मन महसूस के कि काम तो अपना है, अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम शंकर हुसैन।

जहाँ फिल्म शंकर हुसैन का वो प्यारा सा गीत बात हो रही थी कतारों की, और वो बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन पता नहीं आपकी नज़र कहाँ है, हमारी नज़र घड़ी पर है, क्योंकि 11:30 बजे होगा कार्यक्रम स्टंप, जो रिले होता है हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:48 मिनट पर फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। बहरहाल देखिए कि और सुनिए कि इनकी नज़र कहाँ पर है।

स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। मैं हूं आज आपके साथ अनीता, और बातें हो रही थी कतार की। जी हाँ, कतार में खड़े खड़े भी आप बहुत कुछ सीखते हैं ना इंसान के स्वभाव के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कतार में खड़े होकर मतलब अपनी बारी का इंतजार करना अच्छा ही नहीं लगता, और किसी तरह वो घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर बाकी के लोगों का पारा जो है वो चढ़ जाते हैं और वे उन पे हावी हो जाते हैं, है ना। आप अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, कुछ जो एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और कुछ जो मानो तरह तरह की बेईमानियां करना पसंद करते हैं। खैर, ये अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा अनुभव है जब आप देखते हैं अपने आसपास। बहरहाल, सुनते हैं फिल्म अंदाज का ये गीत।

अंत में हमें यही कहना है कि ब्रेक फ्री करने के बहुत सारी मतलब जगह हैं और कई सारी एवेन्यूज हैं, लेकिन कतार वो जगह नहीं है जहां आप ब्रेक फ्री करें। तो सोचिएगा इसके बारे में। और फिर अब तो चलने का वक्त हो गया है, यानी ब्रेक फ्री को समाप्ति की ओर मैं लेके जा रही हूँ, और आप जहां भी जाएं हमें सुनते चले। तो चलिए मिलेंगे 12 बजे समाचारों के साथ, और उसके बाद कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

नमस्कार, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफिनरमीन मैलिएट और फिनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए मुंबई में मेट्रो सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पीक आवर्स के दौरान सेवाओं के बीच का समय कम करें और देर रात तक सेवाएं चलाएं, साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फेरे भी लगाएं। और अंत में खेल समाचार। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की ऋषा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल ऋषा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत से ऋषा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, मैं हूँ आज आपके साथ अनीता, कार्यक्रम म्यूजिक कैफे लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, म्यूजिक कैफे में मेरी कोशिश होती है कुछ अलग गीतों को सुनवाने की, या कोई थीम लेकर, कोई विषय लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होती हूँ। तो आज कोशिश की है मैंने कि 1980 के दशक के कुछ गीत आपके लिए मैं सजा के रखूँ और सुनवाऊँ, जो शायद कम सुने होंगे और कुछ अनूठे भी कहे जा सकते हैं। जैसे कि ये पहला गीत, अक्सर जब फिल्म साथ साथ की बात होती है तो संजीदा गीतों की बात होती है या कुछ ठहराव वाले गीतों की बात होती है, लेकिन इस हक्कड़ से गीत को सुनिए जो मानो हर कॉलेज का लड़का या कॉलेज की लड़की 1980 के दशक में क्यों आज भी शायद इसके साथ एक तरह से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।

क्या गीत काफी मजेदार, और आपने अगर इसे देखी भी होगी तो इसमें कई सारे दिग्गज कलाकार आपको नजर आते हैं और कुछ आवाजें भी शायद आपने पहचानी होगी। और अब चलते हैं एक और गीत की ओर। खैर, हमारे एक श्रोता ये कह रहे हैं कि शायद आज के सभी गीत हसमुख होंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगला गीत जो है वो थोड़ा सा रुला देने वाला है, या फिर ये कहें कि संजीदा सा है। और 1980

0: जी हाँ, ये थी फिल्म एतबार और उसका एक सदाबहार युगल गीत भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ों में, और संगीत बप्पी लाहिरी। जी हाँ, डिस्को वाला कोई भी मानो इसमें पुट आपको नज़र नहीं आता, बिल्कुल ही सॉफ्ट मेलोडियस और अलग ही तरह का जादू जगाने वाला। अब चलते हैं 1985 के एक फिल्मी गीत की ओर। एतबार भी 1985 का ही रिलीज है और ये प्यार झुकता नहीं, और ये जो गीत है इसके गीतकार SH बिहारी, जी हाँ वही जिन्होंने ओपी नैयर के साथ मिलकर धूम मचाई थी, अपने लफ्जों का जादू जो है चलाया था। और इस गाने की खासियत ये है कि जब इस गीत को उन्होंने लिखा तब उनकी शादी नहीं हुई थी, यानी 1950 के करीब उन्होंने उस दशक में ये गीत इसको लिखा था, और बाद में जाकर इसे 1985 में इस फिल्म के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। प्यार झुकता नहीं, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, जहां अपनी शादी से पहले उन्होंने ये गीत लिखा।
1: बिजलियां चमके कभी

या किस स्पष्टता से वे अपनी बात कहते हैं ना, अपने दिल की जो बात है कुछ भी छुपाते नहीं है, साफ कोई है इस गीत में। बहुत कम इस तरह के आपको लव्स मिलेंगे और ये SH बिहारी साहब का कमाल ही था। अब चलेंगे एक और 1980 के दशक के गीत की ओर, फिल्म कामचोर 1982 की रिलीज, और ये अपने आप में एक अलग फिल्म, और जैसा कि शीर्षक ही इसकी ओर इशारा करता है, काम चोरी का जो है शिकार है अपना हीरो और किस तरह बचता रहता है काम और जिम्मेदारी से। बस वही कहानी है, प्यारी सी कहानी और प्यारे से गीत।

जी हाँ, फिल्म बेमिसाल का गीत। और आप घबराइए नहीं, हम किसी से खफा नहीं है और हो भी कैसे सकते हैं। बहरहाल, एक और प्यारा सा गीत और बोल भी कुछ अनोखे, क्योंकि आप गौर करिएगा कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो अब हिदायत यही दी जाती है कि तुम बाहर किसी से दोस्ती मत करना, किसी और से प्यार न करना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही मामला है। गौर से सुनिएगा अंतरों के जो लफ्ज़ हैं और एक अलग ही रंग।

जी हाँ, उम्मीद करूंगी कि आपने वो लव सुने होंगे बिल्कुल हटकर। और अब एक अलग अंदाज, और ये फिल्म उत्सव का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में। अमूमन जो बजता है वो ड्यूएट बजता है आशा जी और लता जी का गाया हुआ, और ये सांझ के वक्त खैर अच्छा लगता है ये गीत, लेकिन ये इसकी जो बात है वो अनूठी है और मैं खुद को रोक नहीं पाई इसे बजाने से। तो उम्मीद करूंगी आपको भी ये अच्छा लगेगा।

जी नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे तो आप अकेलापन कैसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा इंतज़ाम कर रखा है आपके मनोरंजन का। उम्मीद करती हूँ आज का ये म्यूज़िक कैफ़े जो है आपको अच्छा लगा होगा, जो गीत मैं लेके आई हूँ, कुछ कम सुने कुछ सदाबहार। और अब जो है एक फिल्म निकाह का ये गीत अलविदा कहता हुआ, या ये कहता हुआ कि अलविदा मत कहो। जी हाँ, हम भी आपसे अलविदा नहीं कह रहे हैं, बस थोड़ी सी देर के लिए जाएंगे और 1:05 पर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट में कई सारे जो हैं फरमाइशें आ चुकी हैं, कोशिश करूँगी कि जितनी हो सकती हैं उतनी बजाऊँ। बहरहाल मुझे यानी अनीता को इजाज़त दीजिए, 1 होंगे मराठी में समाचार और 1:05 पर फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगी।

जी हाँ, मैं हूँ आज आपके साथ अनीता, कार्यक्रम हिट एंड हॉट, जहाँ पर आप अपने ही पसंद के गीत सुनते हैं। तो लीजिए शुरू करें आज का कार्यक्रम। पहली जो फरमाइश है वो है विजय महूबिया जी की। ये आते हैं किशोरदा के शहर यानी खंडवा से, और इन्होंने

भी भेजी है फरमाइश इस गीत की, जिसकी फिल्म का नाम है प्रेम बंधन, मैं तेरे प्यार में पागल। तो विजय जी सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगली जो पसंद है वो है प्रमोद चिंचोलकर जी की, जो अकोला से भेज रहे हैं फिल्म तेरी मेहरबानियां का ये गीत ये सुनना चाहते हैं, दिल बेकरार था। तो लीजिए प्रमोद जी, हम आपकी बेकरारी को मानो खत्म कर देते हैं और ये गीत सुनवाते हैं।

अगली जो पसंद है वो है फिरोज सिगन प्रिया जी की, जो बेहतरीन गीत लेके आते हैं हमारे लिए, और ये भी सदाबहार गीत, आशा भोसले की आवाज, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम इजाजत, मेरा कुछ सामान।

यह फिल्म इजाजत के इस गीत के बाद अगली जो बारी है वो है दो श्रोताओं की जो नजर रखे रहते हैं कि किनका जन्मदिन है या कौन सी फिल्म रिलीज हुई। जी हाँ, इतिहास के बिल्कुल पक्के ये आप समझ गए होंगे। प्रकाश शिंदे जी और पंकज मोहर जी दोनों ने फरमाइश की है आज का गुंडा राज फिल्म के इस गीत की, क्योंकि आज है अभिनेता चिरंजीवी का जन्मदिन और आकाशवाणी परिवार भी आप सब के साथ उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दे रहा है।

अगली जो फरमाइश है वो थोड़ी सी भावुक है, क्योंकि प्रदीप अनंत कृष्णन जी चेंबूर से हमें लिख रहे हैं कि वो ये गीत समर्पित करना चाहते हैं अपने मरहूम दोस्त राजन डागली जी को, जिनकी मौत हुई कोविड के कारण 2020 में। तो वो उन्हीं को याद करते हुए फिल्म नमक हराम का ये गीत, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं दोस्ती के नाम। तो लीजिए प्रदीप जी, हम भी आपकी यादों में शामिल और हम भी आपके मरहूम दोस्त को श्रद्धांजलि देते हुए आपको ये गीत सुनवाते हैं।

जी अगली जो पसंद है वो है रवीन चौहान जी की, ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म मंजिल का ये गीत, जो सावन का पूरा पूरा मजा किस प्रकार लेना है वो हमें सिखाता है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत, तो लीजिए रवीन जी आपकी पसंद का ये गीत, आपकी नजर करते हैं।

अगली पसंद जल्दी से सुनवा देते हैं दादर से। छाया जी सुनना चाह रही हैं फिल्म संजोग का ये गीत मुकेश की आवाज में। और जैसे कि आप जानते हैं 1:30 बजे होते हैं मराठी में समाचार, 1:40 पर फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं ये गीत, उसका छोटा सा एक अंश।

स्वागत है आपका एक बार फिर से हिट एंड हॉट में। और अगली जो फरमाइश है वो है राकेश माथुर जी की पुणे से, और वो कहते हैं ना, हमारे तीर ही हम पर चलाए जाते हैं। कई जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं हम भी कतार में खड़े हैं। आपको याद होगा जो पहला सेगमेंट था वो कतार पर ही किया था, तो खैर क्या करें, जब तीर चलते हैं तो झेलना ही पड़ेगा। बहरहाल राकेश माथुर जी की पसंद, पुणे से ये फरमाइश कर रहे हैं, फिल्म पूर्णिमा का ये गीत।

जी हाँ, अगली जो पसंद है वो है बाबा जी की, जो वैसे तो 90s के दीवाने हैं, वो कहते हैं अपने मैसेजेस में. और सुनना चाहे 80s की फिल्म का गीत, फिल्म निकाह का ये गीत सलमा आगा की आवाज में, तो लीजिए बाबा जी आपकी पसंद का ये गीत.

जी अगली जो पसंद है वो है दीपा पालकर जी की माहिम से, और मैं कह दूं कई सारी फरमाइशें आ जाई हैं और कईयों ने जो है कतार का सहारा लेकर शायद यहाँ पर भी कुछ मेरे ही साथ किया है कतार में लग के। बहरहाल कईयों के नाम मैं पढ़ना चाहूँगी जिनके शायद गीत आज शामिल ना हो पाएंगे। हितेंद्र दास जी असम से जो हमेशा जुड़ते हैं, संदीप अजमेरे जी यवतमाल से, संदीप कुमार जी, मंगेश जोशी जी, स्वर्ण सिंह जी, चेतन कुमार जी, दिग्दर्शन और कविता जी, अजय साखरे जी इंदौर से, और दत्तात्रेय आदत वेलापुर से। तो इनके मैं कोशिश तो ज़रूर करूंगी, लेकिन मैंने सोचा कम से कम नाम ही क्यों ना पढ़ दूं, अगर किसी वजह से रह गया तो फिर

मलाल मुझे भी होगा और आपको भी। बहरहाल सुनते हैं दीपा पालकर जी की पसंद, माहिम से वो फरमाइश कर रही है फिल्म रिफ्यूजी का गीत।

0: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा।
1: हाँ, ये मौका है, दस्तूर भी है। तो मैं दीपाली शिरोडकर जी की पसंद बजा रही हूँ फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का ये गीत।

अगली जो पसंद है वो है काजल कक्कड़ जी की चेंबूर से, जिन्होंने फरमाइश की है फिल्म कुदरत के इस गीत की। और साथ ही मैं और कईयों के नाम शामिल ज़रूर करूंगी जिनके शायद गीत बज ना पाएंगे। अभिजीत गवहनकर जी, साथ ही हैं शंकराचार्य जी तेलंगाना से, और मैं देख रही हूँ नाम नूरत सुवासिया जी की, मिंटू थॉमस जी की, गुरमीत सिंह और मीता सिंह जी की, और विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, और अमित भगत जो पूछ रहे हैं हमारी बारी कब आएगी। जी भगत जी, कोशिश करूंगी ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल सुन लेते हैं इनकी पसंद का गीत काजल कक्कड़ जी की।

जी हाँ, अब हीट एंड हॉट मानो ख़त्म होने के कगार पर है और इस गीत के साथ आपको छोड़े जाऊंगी और फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, 2 बजे होंगे समाचार अंग्रेज़ी में और उसके बाद होंगे हिंदी में समाचार और 2:30 बजे होगा मराठी का प्रसारण। मुझे यानी आरजे अनीता को अब इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो सेगमेंट पेश किया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।

0: tough for days. So far, 13 people have lost their lives in the current flood. Meanwhile, the IMD has forecast very heavy rainfall in Odisha from today till 26th of this month, posing a fresh challenge to already waterlogged areas. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In the BWF Badminton World Championships, India's women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will take center stage in the semi-finals today. The Indian duo will face top seeds Liu Shengshu and Tan Ning of China at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. More from our correspondent.
2: The Indian duo stormed into the semi-finals yesterday, defeating fourth seeds Jiayi Fan and Zhang Shuxian of China 16-21, 21-15 and 21-13. With this victory, Teresa and Gayatri have assured India of a coveted medal at the prestigious championship. The duo also became only the second Indian women's doubles pair to win a medal at the World Championships. Jwala Gatta and Ashwini Ponappa were the first Indian combination to achieve this feat when they clinched the bronze in London 15 years ago. Earlier in the day, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Janki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Weikeng and Wang Chang. The Indian duo went down to the fourth-seeded Chinese pair in straight games 18-21, 9-21 in the quarterfinals. With Vishnu P.S., Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS youth ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of two foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand to be up against China's Liu Shengshu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर की जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियो शेंगशु और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में

0: अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर

0: सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी त्वरित प्रतिक्रिया

0: और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बास बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडेम में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

क्या बात है भाई। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि को। और अब बचे हैं 5:14 और हमारा फेवरेट कार्यक्रम लव यू जिंदगी शुरू हो चुका है विथ बहुत ही ढिंचैक सॉन्ग्स के साथ कि भाई जब अपना कुछ हो तो हम अपने साथ अपने ख्वाबों को अपने हवाओं को महसूस करें। ये सब कब अपना लगता है? जब हम जैसा चाह रहे हो या ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें हमारा भला हो, तब सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना। हाँ, तो ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों को सुनने के लिए मैं अक्सर ओपन माइक्स में जाती रहती हूँ। अब आपको पता होगा कि ओपन माइक क्या होता है। नहीं भी पता हो तो मैं बता दूँ। देखो, जितना नाम सरल है, ओपन माइक यानी कि कैफ़े या रेस्टोरेंट में ऐसी कुछ सुविधाएं की जाती है जहाँ पर यदि आपको गाना, नाचना, लिखना, कविताएं लिखनी, एक्ट करना, खुद का कुछ बनाया हुआ, खुद के कुछ पीसेस बनाए हुए जो आपने लिखे हैं, या कोई भी कहानी आप नरेट करना चाहते हो जिसमें अधिकतर चीज़ें आपकी लिखी हुई है, बनाई हुई है, और आप स्टेज पर जाइए और कोई भी आपको जज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, सब एक जैसे है तो कोई जज करेगा ही नहीं, बिकॉज दैट्स ओपन फॉर एवरीवन। आपकी बातें आप रखिए, आप अपनी बातें सोच साझा कीजिए। तो मैं बस ऐसे ही एक ओपन माइक में गई थी जहाँ मैं उसको तो जानती नहीं थी, पर कहते हैं ना कि जब आप ऐसे कामों में जाओ, ऐसे आर्टिस्टिक कार्यक्रमों में

तो कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे को जानने की, बस उनका काम जो होता है उससे उसकी पहचान होती है। तो जब मैं ओपन माइक में गई तो एक ने शीर्षक पढ़ा रीडेवलपमेंट, मैंने सोचा अभी ये रीडेवलपमेंट पे कोई क्या ही बोलेगा, मतलब पहले ही आपको भी लगा होगा यार रीडेवलपमेंट में कैसे कोई मुद्दा जुड़ सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। पर धीरे धीरे मैंने उसकी बात सुननी शुरू की, अरे तब पता चला यार कि ये जो रीडेवलपमेंट वर्ड उसने इस्तेमाल किया है इसके पीछे सचमुच कितने सारे इमोशंस मेरे डेवलप हो गए। तो जानेंगे आखिर उसने रीडेवलपमेंट में कौन सा मुद्दा बोला, पर इस गाने के बाद।

तो आप सुन रहे हो आपकी आरजे रिद्धि को ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो मैं बता दूं कि हम बात कर रहे थे एक ओपन माइक की, जहां मैंने कहा था कि मैंने एक मुद्दा सुना, रीडेवलपमेंट। अब देखो, रीडेवलपमेंट, लव योर जिंदगी, यार ये सारी बातें आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, यही तो कलाकार की कला है कि कैसे इन बातों को वो ऐसे एक साथ पिरो दे कि भाई आपको लगे वाह क्या बात है। तो जैसे मैंने कहा, रीडेवलपमेंट की बात सुनकर मेरे अंदर के भी जज्बात डेवलप होने लगे। तो उसने कहा कि जिस घर में उसने अपने जीवन के 35 साल बिताए, आज उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब वो टूटकर फिर से नया बनने वाला है। हाँ, इसका मतलब होता है रीडेवलपमेंट। खुद के घर से दूर जाने के बारे में सोचकर ही आंखें भर आती है। सच ही तो कहा उसने, जिस घर ने उसका रोना सुना, उसकी हंसी सुनी, जब जज्बात लोगों ने नहीं समझे, तब उस घर की दीवारें एक दोस्त की तरह बिना किसी सवाल के बस उसे सुनती रही, जैसे वो शांति से उसे सांत्वना दे रही हो कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब जब मैं उसकी बात सुनने लगी, तो यार जब मैं पहले हंस रही थी, मेरी हंसी जा चुकी थी, मैं धीरे धीरे इस अंग्रेजी शब्द रीडेवलपमेंट के पीछे छिपे हिंदी के शब्दों को महसूस कर रही थी। तो चलिए फिर ऐसे ही आगे बताऊंगी कि क्या क्या उसने कहा और क्या क्या मैंने महसूस किया।

क्या बात है भाई, मैं भी लुट गई जब मैंने रीडेवलपमेंट के बारे में उस सामने वाले कलाकार के जज्बात सुने। उसने आखिरी पंक्ति जो कही थी, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि जैसे वो शांति से उसे सांत्वना दे रही हो, कौन? घर, घर की दीवारें, कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, जीवन के हर उतार चढ़ाव में जिस छत ने हमेशा अपना हाथ उसके सर पर रखा, अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया। दीवारें बहुत कुछ समझती है। जब उसने ये पंक्ति कही कि दीवारें बहुत कुछ समझती है, तो मैं सच में सोचने लगी कि हाँ यार, हम कभी गौर से देखते ही नहीं कि जिस आशियाने में, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर की दीवारें बहुत कुछ समझती है, और गौर से देखो तो शायद बहुत कुछ बोलती भी है। मानो जैसे माँ और पिता, एक का हाथ और एक की बाहें हमेशा हमें संभाल रही हो। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जब अपने घर की याद सताती है, और बड़े ट्रिप के बाद घर की चाबी से जैसे ही दरवाजा खोलो तो मानो घर कह रहा हो, इतने दिन क्यों लगा दिए, मैं बहुत अकेला रह गया था। जब सामान समेटने की बारी आई, तब हाथ मानो पूछ रहे थे कि थोड़े दिन के लिए जाना है या। अब जैसे ही उसने या के बाद क्वेश्चन मार्क रेज किया, मतलब आप समझ रहे हो कि उस घर में, उस घर से जो जुड़ी अपनी यादें हैं, जो बातें हैं, वो सारी कुछ अब हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। तो उस घर ने पूछा, उस हाथ ने पूछा कि ये जो पैकिंग तुम कर रहे हो, ये थोड़े दिन की पैकिंग कर रहे हो या फिर हमेशा के लिए? तो ये सवाल सुनते ही सच में मानो हमारे अंदर जितने भी अपनी बातों को लेकर, अपने घर को लेकर, अपनी यादों को लेकर, अपने जिंदगी को लेकर मानो जितने भी जज्बात हो, एक साथ उमड़ पड़ते हैं। सच कहा ना।

क्या बात है, मतलब हम जो बात करने वाले थे कि भाई रीडेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, और उसी के साथ जो गाने होते हैं ना, कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हर गाने में जो उनकी पंक्तियां होती है, वो शब्द होते हैं, वो हमें कैसे रिलेट करते हैं कि हाँ कुछ समय ऐसा आया जब आप दुखी हुए, बट साथ ही साथ कहते हैं ना कि यार छोड़ो बुरी बातें, छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो दुखी वाली बातें और बस इंजॉय करो, बस इंजॉय करो। तो हम कहाँ थे, उसने कहा कि हाथों ने पूछा कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो, थोड़े दिन के लिए या फिर, तो ये प्रश्न चलता रहा। जब दूसरा घर ढूंढने की बारी आई तब हर नया घर देखकर अपना ही घर बेहतर और प्यारा लगा। अब वैसे तो हम कई बार अपने घर में खामियां निकालते रहते हैं ना, कि घर पर ये काम करवाना है, घर की ये दीवारें ठीक करवानी है, खिड़कियां सही से लगी नहीं है, इसको फिर से नई लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, न जाने कितनी खामियां। बट आज जब नया घर या दूसरा घर ढूंढने की बारी आई, देखो दूसरा है ना, मतलब अब अपना घर ज़्यादा अच्छा लगने लगा। हम कहते हैं कि यार दूसरे घर को देखकर याद आया, नहीं यार, जो घर अपना था ना वो ही ज्यादा अच्छा था। क्या पता कौन सा दिन, कौन सी रात हम आखिरी बार इस घर में है, यानी अपने छोटे से आशियाने में बिता रहे हैं। जब उसने ऐसा कहा तो मुझे भी एक पल के लिए रियलाइज हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी अच्छी चीजें, हम कह सकते हैं कि भले उनमें जान ना हो पर फिर भी वो हमें सुनती है। इंसानों को छोड़ो, जो वस्तुएं हैं वो भी हमारा साथ देती है। तो मेरा भी ख्याल बस अपने घर के बारे में सोचने लगा कि यार ये कह तो सही रही है। जब आंखें भर आती है ये सोचकर कि घर का वो कोना, वो रसोई घर, वो खिड़की, बिल्डिंग की सीढ़ियां, टेरेस, जहां बहुत पहले रंगारंग कार्यक्रम होते थे, अब सब कुछ छूट जाएगा। किस तरह से वो घर उसका हुआ था, अब आपको तो पता ही होगा, आप सबकी भी ऐसी कुछ ना कुछ कहानियां जरूर हुई होगी, कुछ कष्ट भर, कुछ दुखी वाली, या कहते हैं कुछ ऐसी कॉमेडी जहां हो जाए कि यार पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला हो। तो कुछ ना कुछ करके हर एक के घर के पीछे एक कहानी होती है, खुद के घर की कहानी, किस तरह ये घर उसका हुआ था। ट्विस्ट और मनी मैटर की बातें सुनकर उसे हंसी आ जाती है। वो हमें आगे बता रही थी कि कैसे उन्होंने पैसे अरेंज किए, कैसे वो घर उसका हुआ। कोई घर खुद चुनता है उसके मालिक को, ये तब पता चला। हम घर को नहीं चुनते हैं, घर खुद अपने मालिक को चुनता है।

सही कहा कि ये जीवन है एक सर्कस, कभी सीधे कभी उल्टे। तो सच में जब उसने रीडेवलपमेंट की बात कही तो वो सारी बातें यादें मेरे आंखों के सामने भी एक पिक्चर की तरह चलने लगी। उसने फिर आखिरी पंक्ति में बस ऐसे एंड किया कि बहुत याद आएगी तुम्हारी और अपने दिल की दीवारों में ये घर हमेशा रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन पर पता है वो घर क्या बोला? उसने कहा, अब कुछ नया अनुभव, नया घर, नए लोगों, नई दीवारें, नई खिड़कियों से मिलने की बारी है। मेरी भी अब उम्र हो गई है, जब मैं फिर से नया बन जाऊं तो मुझे मिलने जरूर आना और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। वाह भाई वाह, जब उसने आखिरी पंक्ति कही जैसे मानो सच में हम सब जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, मानो ऐसा लग रहा हो कि हमारे घर भी हमें यही कह रहे हो कि मैं तो हूं तुम्हारे साथ। अरे मैं तो, कहते हैं ना, वो रीबॉर्न रीबर्थ होने वाला हूं, मैं फिर से बनूंगा और मुझे फिर देखने आना जब मेरी दीवारें फिर से नए पेंट से चमचमाएगी, मेरी खिड़कियां फिर से मजबूत हो जाएगी और मेरे कोनों से तुम्हें कोई भी, कहते हैं ना, कि नाराजगी नहीं होगी कि अब तो सब कुछ अच्छी तरह से ठीक हो चुका है ना। तो बस ऐसे ही रीडेवलपमेंट की बातें हम सबको हमारे घर, हमारी दीवारें और उनसे जुड़े जज्बातों से लेकर सारी चीजें हमें याद दिलाती है कि

शुक्रगुजार मानो उस घर का, उस छत का, जो हमें हमेशा अपनी पनाहों में रखती है। यहीं के साथ हमारा लव यू जिंदगी कार्यक्रम समाप्त होता है और आगे हम मिलेंगे एक प्रादेशिक समाचार के बाद अंदाजे बयां में। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

क्या गम है जो छुपा रहे हो, क्या बात है। मतलब पंक्तियां अपने आप से कहीं ना कहीं, ये जो गाने हैं ना हमारे जो लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम जो बात कर रहे थे रीडेवलपमेंट की, उसी से जुड़ी हुई है। आप जितने भी लोग हमें सुनते हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें एक परिवार की तरह ही तो एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, लगता है, फील आती है कि हमने ये बात आपसे शेयर की, आपने सुनी, आपने हमें मैसेज किए और आपकी बातों को हमने समझा, जज्बात, ये सारी जो बातें हैं जब इनका साथ होता है हमारे गानों के साथ, फिर हमारा कार्यक्रम शुरू होता है जो कि जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हो आपकी सखी आरजे रिद्धि को, जो कि केवल FM रेनबो 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं। और अब हमारे कार्यक्रम अंदाज़े बयां की शुरुआत हो चुकी है। अंदाज़े बयां कहते हैं कि पुरानी हो गई दुनिया, उसे मिसमार करना है, नई तामीर की खातिर नई बुनियाद रखेंगे। ये पंक्ति लिखी है उमेद सिद्दीकी जी ने। अब सच तो कहा है कि अब जब नया कुछ लिखा हो तो पुराना छोड़ना पड़ता है, नई दुनिया को देखने के लिए पुरानी दुनिया को छोड़ना पड़ता है। हाँ, पुरानी और नई के बीच में रह जाती है ये यादें, और यादें तो भाई हमारे एक ट्रेजर की तरह है, उसको संजो के रखिए, कभी कभी ट्रेजर में से कुछ चीज़ें निकालिए, याद कीजिए, मुस्कुराए और मुस्कुराहट के साथ कुछ आंसू भी बहा दीजिए। तो सुनते रहिए फिर ये गाने और इनके साथ अपने ट्रेजर में से यादों की कुछ चीज़ें निकालिए।

क्या बात है, क्या बात है। नया लिबास पहनकर भी दुनिया वही पुरानी है। नजीर कैसर लिखते हैं ये कि नया लिबास पहनकर भी दुनिया वही पुरानी है। हाँ, तो सच्ची तो कहा है कि कपड़े हैं तो बदलने तो पड़ेंगे, नए कपड़ों का अंदाज़ा लगाना होगा, नए कपड़ों को अनुभव करना पड़ेगा, नए रंग, नई बातें, सब कुछ नया। लेकिन हाँ, दुनिया वही पुरानी है। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि आपकी दुनिया, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आप खुद पुराने हैं। पुराने से मतलब यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सारी पुरानी सोच या पुराने तरीके से ही रहना है, लेकिन हम जिसे कहते हैं ना कि हमारे रूट्स हैं। अब पेड़ बड़ा होता है, टहनियाँ आती है, नए पत्ते आते हैं, पतझड़ आता है, फिर नई टहनियाँ आती है, नए फल आते हैं। कुछ फल अच्छे होते हैं, कुछ फल मीठे होते हैं, तो कुछ फल पक्षियाँ खा जाते हैं, लेकिन जड़ें तो वही रहती है, जड़ें तो अपना काम करती रहती है। उसी तरीके से जब हम नई चीज़ों को अनुभव करते हैं पर पुरानी यादें, पुरानी बातें हमारे साथ रहती हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। जब लिबास पहनकर भी तुम्हारे अंदर की वो पुरानी दुनिया नहीं मिटती, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ भाई, मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, साथ साथ पुरानी बातों को रख कर, समेट कर, नए अनुभव को भी कर रहा हूँ, झेल रहा हूँ, देख रहा हूँ।

नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। ये पंक्ति हसरत मोहानी जी ने लिखी है कि क्या खूब कहा है कि यार महीनों तक उनका जिक्र तक जहन में नहीं आता, पर जब याद आ जाने लग जाए या ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात हो जाए कि बस आप उसी समय स्तब्ध रह जाते हो, और किसी वस्तु की कहो, कुछ यादों की कहो, तो कुछ पलों की बात करें या किन लोगों की बात करें या कोई भी ऐसे वाक्य की बात करें कि अरे इतने सालों बाद अचानक से याद आ गई। होता है ना ऐसा, हम कर क्या रहे हैं और हमारे दिमाग में अचानक से कौन सी बातें चलने लग जाती है, और उन बातों के जरिए हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हैं, और फिर जब उस दुनिया से बाहर आते हैं तो हंसकर खुद को डपेटते हैं कि अरे तू कर क्या रही थी और तुझे याद क्या आ गया। पहला पत्थर याद हमेशा रहता है, दुख से दिल आबाद हमेशा रहता है। साबिर वसीम जी लिखते हैं कि हाँ, पहला पत्थर याद हमेशा रहता है, दुख से दिल आबाद हमेशा रहता है। आपने कभी एक बात नोटिस की है कि अगर मैं 1 से 10 अंक के पहाड़े लिखूं, आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो उन पहाड़ों में से, उन टेबल्स में से, आपको सारी चीजों में से अगर मैं कहूं कि चलो गलतियां निकालो, खामियां निकालो, तो यदि मैंने एक पहाड़ा गलत लिखा हो तो आप झट से पता कर लोगे और बताओगे कि ये तो आपने गलत लिखा है। अरे एक गलत लिखा है, पर उसके मुकाबले दूसरे जितने भी 1 से लगाकर 10 अंक तक के पहाड़े थे वो सब तो सही है ना। मतलब हम सबकी मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसी ही है कि हम जो बुरे पल है या खामियां हैं या जो गलती है वो याद रखते हैं, और ऐसे ही तो दिल कितनी बार जीत लिया किसी ने ये याद नहीं रहता, लेकिन जब दिल दुखता है तो वो एक टिस्सी होती है, वो हर पल हमें याद रहता है।

क्या बात है, लश्कारा गाना अपने आप में ही लाजवाब गाना है। और इस गाने की फरमाइश की थी प्रमोद चिंचोलकर जी ने, विजेंद्र घटोल जी ने। और क्योंकि आज 22 अगस्त सुप्रसिद्ध कलाकार चिरंजीवी जी का जन्म दिवस है, तो क्या बात है, हैप्पी बर्थडे सर। और इन गानों को सुनकर वास्तव में हम पुराने दिनों में चले जाते हैं और उन पुराने दिनों की जो महक है वो याद आ जाती है। और भी ऐसे सुंदर गाने हम सुनते रहेंगे इस कार्यक्रम में हम तुम, जहां आप बताएंगे कि हमें कौन सा गाना प्ले करना है। और आप वैसे तो सुन रहे हैं और आपको पता भी है और याद भी है, पर फिर भी नए लिसनर्स के लिए आप सुन रहे हैं आपकी सखी आरजे रिद्धि को ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: तुमने कह डाला।
1: क्या बात है, क्या कह डाला, क्या बात है। तो ये जो दो गाने आपने बैक टू बैक सुने थे वो थी फरमाइश अशोक पाटिल जी की और राकेश माथुर जी की। और अब जो गाना आप सुनने वाले हैं वो है फरमाइश फिरोज सिगनपुरिया की। उसके बाद जो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की है प्रणव शिंदे जी ने, और उसके साथ ही और भी ऐसे गाने हम सुनते रहेंगे।

0: You know, many people don't know this is a song inspired by the famous romantic novel by Ernest Hemingway. The Bee Gees were reading this book, Islands in the Stream, and they came up with this amazing song. So many songs of the Bee Gees are actually inspired by great books of literature. For Whom the Bell Tolls, lots of other songs of theirs. Keep listening in to the number one station in Amchi, Mumbai, and that's Akashwani's Rainbow Channel on FM 107.1. My name is Fali. Let me tell you what's coming up right now. We've got the news coming up in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. and at 9:15, we'll be playing for you the greatest concert album of all time. Are you excited about that? We're going to play that just for you on the number one station. Stick around for the news right now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की कि संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
2: ऐसे आंगनवाड़ी

0: सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान सौभाग्यता किया जाए।
1: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।

श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

0: मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
3: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में

0: तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारू भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP President said the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution, restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Later, briefing the media in New Delhi, BJP National General Secretary Vinod Tavade announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The National General Secretary said the campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. He said the party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality.
3: Under the Seva Setu campaign, officers from the departments concerned with various government schemes will remain present at the block level for 15 days along with the necessary documents. People who from some region have been left out of the benefits of the government schemes will get an opportunity to enroll themselves in these schemes through special programs organized at the block level during this period.
2: Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri, West Bengal today. After the meeting, a decision was made to form an intermediary committee headed by former IPS officer Pankaj Singh to solve all the problems permanently in connection with the hills in North Bengal. More in this report.
4: Along with the committee head Pankaj Singh, former BSF director and deputy national security advisor will be in the committee which will give report to the centre. Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bishta said that the meeting was very fruitful and that all the Gorkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, Chief Minister Shuvendu Adhikari also expressed his views

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर

0: सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपये की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और तैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता जरूर होता है जिसे कोई नाम देना आसान नहीं होता दोस्तों। वो रिश्ता जिसमें शिकायत कम और समझ ज्यादा होती है, जहां साथ होने के लिए हर वक्त साथ रहना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी होता है कि दिल को यकीन रहे कि कोई तो है जो हमें समझता है। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी, रंग महफिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM

आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में। कभी कभी किसी की कही हुई एक छोटी सी बात परसों हमारे साथ रहती है, शायद इसीलिए कि वो बात शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से कही गई होती है, और दिल से निकली हुई बातें समय के साथ भी कभी पुरानी नहीं पड़ती, ये बस और गहरी होती चली जाती है।

मोहब्बत में ना दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें किसी को पाने से ज्यादा किसी को महसूस करना जरूरी होता है। दूरी हो सकती है, खामोशी हो सकती है, रास्ते भी अलग हो सकते हैं, फिर भी किसी ना किसी का साथ में होना हमारे भीतर बना रहता है। कुछ रिश्ते पास रहकर भी दिल में रहकर निपटते हैं दोस्तों। ताइए इसी एहसास के साथ पेश है ये अगली गजल आपकी नजर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। और दोस्तों, जिंदगी में ना कुछ शामें ऐसी आती हैं जब हमें किसी से कोई बात ही नहीं करनी होती, बस कोई पास बैठा रहे बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे। शायद यही सुकून है जब किसी की खामोशी भी हमारी खामोशी को बहुत अच्छे से समझ ले। शायद यही रिश्ते का वो हिस्सा है जहाँ किसी से कहे बगैर भी हम अपने दिल की बात उनके दिल में धड़क

होना हमेशा उसका मिट जाना नहीं होता। कभी कभी रिश्ता हमारी जिंदगी से निकलकर हमारी समझ का हिस्सा बनने लगता है। हम थोड़ा और संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़ा और समझदार, और शायद थोड़ा कम शिकायत करने लगते हैं। तो चलिए कुछ पल खामोश रहते हैं। जो कहना है ना, उसे शब्दों में नहीं छोड़ते। जिसे याद करना है उसे दिल में याद करते हैं, और जिसे प्यार करते हैं उसे बता देते हैं। क्योंकि जिंदगी हर बात के लिए कल का वादा नहीं करती।

और दोस्तों, आज के प्रोग्राम की इस आखिरी पेशकश के साथ अब विनीता बेटी को दीजिए इजाजत आज का रंगे महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और गजल के साथ। तब तक कुछ खामोशियां संभाल कर रखिए, कुछ यादें बचा कर रखिए और दिल में थोड़ी सी जगह मोहब्बत के लिए जरूर रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और अब वक्त हो चुका है 12:02, जो कि वक्त है कार्यक्रम जीरो आर शो का, जिसे लेकर आई हूँ

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और अब वक्त हो चुका है 12:02, जो कि वक्त है कार्यक्रम जीरो आर शो का, जिसे लेकर आई हूँ जन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के

0: ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है।

तो साथियों वक्त हो गया है 1:02, जो कि अब कार्यक्रम आपके आगे हाजिर है सुहानी रात, जिसे लेकर आई हूं मैं प्रीति कमल। तो शुरुआत करते हैं अलका याग्निक के गाए इस गीत से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: पराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

रात्रि के 2 बजने को हैं और आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 2:02 हुए हैं और कार्यक्रम है भुलाए न बने। तो सुनिए हरिहरन की आवाज में ये बॉम्बे फिल्म से बहुत ही मधुर गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: आठवीं तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को भारत की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति

उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार करते हुए उन्हें दिखाया गया है। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण तेज वर्षा होने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।